0: gebu ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de ngo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mu zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जुब सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से के जो लंका मास दे जिना नो येंदा ला यांस चाउ रे हो होयो मजो जो जटा मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने चिप जो लंका बि पेडो रे
0: जे जे तंगा ह गिंग के के शाम बत कि छि इन रो तिन मोनी ला सान रो रे
1: ओ रे जे रे
2: लंका
1: के तो तो
2: हमें
1: छाया बस
2: के छुना
1: जे
2: पिन जे जो
1: खयो गोया बुदा
3: 把做金宝没有为妻，场面解决冷酷了，马子有呢也不有。这句难不毛那样，爹娘这句咋话意？句句难句用了土，可得牛子千里过地没动啊当，可得金钱多了没动啊，出来多呢可得没动啊，可得公个。
4: 三门也往记下去，搁清不了。最近俺去，真正这从来送出去呢。若来店家的，也是学生的店面，若来下顿用下去，给你写的。店家的店面，这就可有钱，全部。